जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी वडभागी हो जो अज बुधवार दे विशेष दीवान सजदे ने इस दीवान दी हाजरी भरदे हुए आप जी सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन सरवण कर रहे थे। जिवें कि पिछले समय विच इस स्थान दी मर्यादा मुताबक हर बुधवार गुरु इतिहास दी विचार आप संगतां नूं सरवण कराई जांदी सी, गुरमुख प्यारियां ने अपराला कीता है, ओ इतिहास दीआं पोथियां प्राप्त करके अज तों फिर उस लड़ी नूं आरंभ कर लगे ने। आप जी जिवें भली प्रकार जाणू इतिहास एक उस जंजीर दी तरह जेड़ा साडे वर्तमान तो लै के सानू बीत चुके समय दे नाल जोड़दा है। भावां के गुरु घर दे अंदर साखियां दी परंपरा साखियां दी प्रथा गुरु अंगद साहिब जी दे वेले तो आरंभ हो गई। सतगुरु गुरु अंगद साहिब जी ने भाई बाले तो सरवण करके भाई पैड़े मोखे तो गुरदेव दियां साखियां अंकित कराईयां। उस तो बाद बाबे पिरतिये दी संतान विचों बाबा मेहरवान ने कुछ गुरु का इतिहास इकत्र कीता। फिर गुरु के सिख बेअंत ऐसे हुए जिन्हां ने गुरु के इतिहास नूं काव्य रूप विच भी लिखिया ते वार्तक रूप दे अंदर भी लिखिया, वख वख गुरु साहिबाना दे जीवन नूं बयान कीता। किसे ने गुरु हरगोबिंद साहिब दे जीवन नूं लिखिया कवि सोयन वर्गियां ने, ते उन्हां ने नाम लिख दिता गुरबिलास पातशाही छेवीं, सारा गुरु हरगोबिंद साहिब दा जीवन। किसे ने पातशाह दसवें दा जीवन लिखिया गुरबिलास पातशाही दसवीं, ये दो ग्रंथ ने, एक भाई सुखा सिंह दा लिखिया एक भाई कोयर सिंह दा लिखिया। इस तो इलावा महिमा प्रकाश लिखिया गया एक वार्तक रूप अंदर एक काव्य रूप अंदर। एदे नाल ही मैं एक अर्ज करा जिस विद्वान कवि दा इतिहास तुसी सरवण करदे हो सिख धर्म दे अंदर पहला विद्वान है भाई संतोख सिंह जिन्हें गुरु नानक साहब तो लैके ते बाबा बंदा सिंह बहादुर तक दा जीवन अपनी कलम न लिखे। मैं अर्ज करदे हां इस करके कथा तो पहला भाई साहब भाई संतोख सिंह जी जेड़े बिल्कुल एक गरीब जै परिवार विच पैदा होए ने, इन्हां दे पिता दा नाम सी भाई देवा सिंह जी, अंबाले दे नेड़े बुढ़िए पिंड विच रहण वाले सन। इन्हां दे पिता जी नूं चाह सी गुरबाणी दे अध्ययन दा पठन पाठन करन दा। पिता जी इन्हां दे अमृतसर आए, उस वक्त श्री दरबार साहब दे मुख सेवादार सन ज्ञानी संत सिंह जी। कवि संतोख सिंह उरां ने ज्ञानी संत सिंह जी उरां कोलों एक काव्य

गोविंद सिंह जी तक पूरा जिहड़ा जीवन ए दो ग्रंथ ने, एक है श्री गुरु नानक प्रकाश, उहदे विच केवल गुरु नानक साहिब दा जीवन है, ते एक है श्री गुर प्रताप सूरज, उहदे अंदर गुरु अंगद साहिब तो लैके ते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह ते बाबा बंदा बहादुर सिंह तक यह जांदा पूरा इतिहास। कवि संतोख सिंह जिन्हां ने कैथल बैठ के राजा उदय सिंह की रियासत विच यह ग्रंथ लिखे है, जदो उन्हां दे आपां जीवन नूं पढ़ने हां, एक सज्जन नूं मैं वार्तालाप करन दा समां मिलिया, उह कहिंदा जदो भाई संतोख सिंह यह कविता उचारदे सन, यह लिखदे आप नहीं सन, इन्हां ने अपने हाथ दे अंदर चार पांच कड़े पाए हुंदे सन सज्जे हाथ विच, जदो कविता उचारण करनी पांच छे कड़े इन्हां ने पाए होने, एक पासे ओ कड़े छनकाने शुरू करने, उन्हां कड़ियां दी लय नाल उन्हां कड़ियां दे ताल नाल भाई साहब ने कविता उचारी करी जाणी, ते जिहड़े लखारी सन उन्हां ने नाल दी नाल लिखी जाणा। अज जिवें दरिया चल पैंदा सी कविता दा, गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक पूरा इतिहास जिहड़ा है, ये 2.5 लाख काव्य पंक्ति बनती जिहड़ी कवि संतोख सिंह ने उचारण की, एक दो नहीं 2.5 लाख। ते जिदन ये ग्रंथ तैयार होए ते उस दिन भाई साहब उरी इन्हां ग्रंथां नूं लैके श्री अकाल तख्त साहब ते आए सन, उस सिख की निर्माणता तको अज भी विद्वान बड़े मिलणगे लिखारी, पर वह चार पन्ने का कोई छोटा जा पैंफलैट भी लिखद, ट्रैक्ट को लिखद, ते वह भी कह दिंदा सब जिहड़े हक ने वह लेखक दे राखवें ने, मेरी इजाजत तो बिना इनू कोई छाप नहीं सकता। जिस गुरमुख ने 2.5 लाख कविता की पंक्ति उचारण की, वह सारे ग्रंथ लैके अकाल तख्त ते आया, ते आके उत्थे कहा सी इह सतगुरु गुरु नानक साहिब की दात है, ये खालसा पंथ की इमानत है, इनू सांभ लो, ते जे इहदे विचों कोई भुल होवे ओनू तुसी मेरी भुल जानना, ते मेरे गुरु का जीवन जिहड़ा वह तां सूरज की तरह चमकदा पिया, भुल्लां मेरियां होणगियां, महिमा गुरु की होवेगी। डॉक्टर तारण सिंह एक विद्वान होए ने पटियाला यूनिवर्सिटी विच, उन्होंने लिखे है कहिंदे ने भाई साहिब भाई संतोख सिंह ने ग्रंथ भेट किए, इन्हां नूं अकाल तख्त वालों सरपाओ मिलिया, उस साल ये घर गए ने, ते एक दिन अमृत वेले जाण तो बाद परिवार समेत आए सन, अपने घर गए जाके अमृत वेले इशनान किया, ते जदों सिमरन विच बैठे ने इस गुरमुख प्यारे ने अपने शरीरक चोले नूं भी सिमरन विच त्यागिया, समाधि विच बैठे ने, जदों परिवार ने जाके उठाया ते देखिया केवल शरीर है, पर अंदर वाला हंस तां उस प्रीतम दे देश विच पहुंच गया है जिदियां कथा कहानियां करन भाई संतोख सिंह आए सन। डॉक्टर तारण सिंह लिखदे ने सिखो उहदे विचों ऊण ताईयां ना टको, समझो इस गल नूं भाई संतोख सिंह केवल आए ही इस करके सी कि दसां पातशाहियां दा जीवन एक थां ते इकत्र करन वास्ते। जदों कोई मनुख लिखदा है भुलणहार है, गलतियां बड़ियां हुंदियां ने, उह ग्रंथ दी विचार अज फिर शुरू होण लगी है। गुरु प्यारिओ प्रसंग आप पिछोकड़ विच सुन चुके हो, गुरु अर्जन देव जी महाराज अमृतसर दी धरती ते विराजमान ने, क्योंकि उस वक्त इस शहर का नाम सी गुरु का चक, कुछ चक गुरु का भी कहिंदे ने, इहदे नाम बदलते रहे ने, रामदासपुर भी पिया है, सुधासर भी पिया है, हुण आपां इहनूं श्री अमृतसर साहिब कहिंदे। हजूर अमृतसर सेवा पै करांदे ने, कवि जी दे मुताबक संतोख सर दी सेवा करांदियां उत्थों इक मठ निकलिया जिहदे विचों इक जोगी निकलिया सी, जिन्हें कोई सवाल जवाब किए सन, पुछया सी महाराज जदों मालश की ए समा केड़ा है, गुरुदेव नाल कुछ बचन बिलास होए, उत्थे साहब ने एक शब्द उचारण किया सी, बाजी गर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पसारा, ए सारा शब्द जिहड़ा जोगी नूं संबोधन करके उचारिया, भावां के जिहड़ा संतोख सारे ए संतोखे नामी एक सेवक ने अपने वालों माया दे के सरोवर की सेवा कराई सी। साध संगत कवि संतोख सिंह ए प्रसंग आप सरवण कर चुके हो, कहन लगे ने अज मैं तुहानू ओ प्रसंग सुनाना वा, कवि जी मुताबक कहन लगे जिस प्रसंग नू सारी दुनिया जानदी है के अमृतसर दी महिमा

होते परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी ने इस संध्या वेले दे दीवान अंदर हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा रस पिना कीर्तन सरवण कीता है। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दी उस्तत अंदर उचारण कीते हुए सवैया विचों पट्टां दे बचन आपने गुरबाणी कीर्तन विच सरवण कीते ने, जिथे आपां रोजाना सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दी विचार गुरु की बाणी दी विचार करने हैं। उथे हर बुधवार गुरुदेव जी दे पवित्र इतिहास नूं भी आपां वाच रहे हां। जिवें पिछले बुधवार आपां ने विचार कीती सी के पट्टी दे इलाके दा चौधरी जिस दे घर अंदर पंज धियां ने, उन्हां विचों एक दा किरदार एक दी भावना नूं परमेश्वर ने इहो जिहा भाग लाया कि जिथे भी कोई महापुरश कोई गुरमुख जन बैठदे ने, ए बच्ची उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे बचन श्रवण करदी। ते एक दिन धन गुरु नानक साहब जी दे दर तो बख्शे हुए कुछ गुरसिख जड़े एकांत विच बैठ के गुरबाणी दी विचार कर रहे सन कि हर एक नू रिजक देन वाला केवल एक परमेश्वर है, हर एक दे भागां विच जो मालक ने लिख दिता है ओ कुछ उसनू नसीब हो जांदा है। ते इस बच्ची ने गुरदेव दे उस शलोक नू अपने खिरदे विच दृढ़ कर लिया ते जबान तो कंठ कर लिया कि पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतां के हर एक नू रिजक देन वाला परमेश्वर। जदों बच्ची घर आई है ते एक दिन आपस विच पंजे भैणां बैठियां ने ते चार विचार करदियां ने चार जनियां कि साडा बाप साडा बापू पिता कितना चंगा है जिहड़ा पहरन नू वस्त्र दिंदा है खान नू भोजन दिंदा है तन ते पाण वास्ते सुंदर गहने लैके दिंदा है ते इह खामोश हो के सब कुछ सुनी जा रही है। पर जदों इहनू पुछया गया तू क्यों नहीं बोलदी ते इस बच्ची ने इको उत्तर दिता सी, नहीं भैणों एक केवल तुहाडे मन दा भुलेखा है कि देण वाला साडा बापू वे साडा पिता है, नहीं किसे दा कोई भाग नहीं दे सकदा लै सकदा, देण वाला केवल एक निरंकार है, मैं तां उहदा दिता खानी आ उहदे दिते हुए वस्त्र पानी आ उस निरंकार दे दिते हुए तन ते गहने पाए ने। आपस विच ए लड़ झगड़ के उठ गईयां ते चारा ने जा के दुनी चंद नूं कहा सी कि देख असी तां कह रहीआं बापू तेरा दिता खानियां वा, पर ओ कह रहीए देण वाला कोई होर है। जदों बुलाया गया ते इस बच्ची ने बेबाक होके कह दिता कि देण वाला बापू केवल एक परमेश्वरी जिहड़ा पत्थर दे कीड़िआं नूं रिजक देंदा है, जिहड़ा पानी विच पैदा होए जीवां नूं रिजक देंदा है, जिहड़ा धरती ते पैदा होई बनस्पति नूं रिजक देंदा है,
असलियत पुछें ते जो कुछ तू राज भाग मानना पे ए भी उस करतार दी दित्ती दाते एवें भुलेखे विच पै के तू कह रहा मैं देन वाला कोई किसे नू देन वाला नहीं अपने भाग खांदे ने उस दे मन नू इन्नी हंकार नू चोट वजी कह लगा जे तू रब दा दिता खानी है जे तू करतार निरंकार दा दिता खानी है ते साड़ी बरादरी विच एक कोड़ी है मैं तेनू ओदे लड़ ला देंगा फिर देखांगा कि वह करतार वो निरंकार तेरे भागां विच जे ओवे तू अपने भागां विच इत्थे नरक भोगेंगे। उस बच्ची ने सत बचन करके प्रवान कर ले इथों तक आपां ने विचार कीती सी। आओ इस तो अगे इस पवित्र प्रसंग नू आपां वचने ते सतगुरु गुरु रामदास दे दर दी लईए टेक। कवि संतोख सिंह ने इस प्रसंग नू गुरु अर्जन देव जी दे वेले नाल संबंधित कीता पर जदों इतिहास नू पड़चोलने आ ते असलीयत ते ए प्रसंग गुरु रामदास जी दे वेले वापरे। गुरु रामदास सरोवर करीब करीब तैयार करा चुके सन पूर्ण ताल खटाया भाई गुरदास होरां ने जिक्र कीता पर खैर जिमें कवि संतोख सिंह ने इस नू बयान कीता अज इस दीवान दे अंदर संत बाबा लाभ सिंह जी कार सेवा वाले उन्हां दी सुपत्नी बीबी हरभजन कौर जिन्हां दी सतवीं बरसी उन्हां दे सपुत्र वल्लों भी इह समागम मनाए जा रहे हैं। सतगुरु कृपा करे इस परिवार नूं अपने दर नाल जोड़ी रखे। आओ प्यारिओ इस इतिहासक प्रसंग दी विचार करन तों पहलां मनोबिरतियां एकागर करो सुरत गुरदेव दे चरणा अंदर जोड़ो ते बख्शो आशीष बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो बख्शिश गुरमुखो फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

0: जंत सरबत नाओ तेरा त्यामना, तू ताता दातार तेरा दिता खामना। देन वाला केवल एक ओवे, पर जे मैनू तुसी कोड़ी दे लाड़वी ला दोगे, मैं इसनू करतार दी रजा समझ के, उस वैगुरु दा हुक्म समझ के प्रवान करांगी।
1: कहो प्रथम सोई पत मेरा, तथा भाग मैं अपनो हेरा।
0: जे मेरे भागां विच ओ कोड़ी पति लिखिया महा, फिर मेरे भागां नू गुरु परमेश्वर तो बिना कौन है मिटाण वाला। मैं इस गुरु की आज्ञा नू सत करके मनांगी।
1: रहे हटाए लोग मिल कने, कुश्ती संग कष्ट बहु पने।
0: कहिंदे ने केवल मां नहीं, इस पट्टी पिंड दे लोग भी इकट्ठे होए ने, ते स्याणे दाने आ के कहन लगे, बचड़िए तू अपने बापू दे हुक्म अगे सिर चुका दे। तू मन जा के तेरा पिता सब कुछ देण वाला है, पर जितने भी दाने स्याणे आए, इस बच्ची ते किसे दी आवाज दा किसे दे बचन दा असर नहीं। केवल इको राटे के जो मेरे निरंकार दा हुक्म है, ओनू कोई नहीं मेट सकदा।
1: रहे फेर सो फिरी ना फेरे, फेरे फिरी साथ तिस गेरे।
0: कवि जी किन्ने बड़िया ने रोकन दी वर्जन दी कोशिश की थी, पर ओ बच्ची रुकी नहीं। अखीर ते उस नरदई बाप ने की कीता, उस कोड़ी दे घर नाल ओदे मापिया दे नाल उन्ने अपना संपर्क बनाया, ते कहन लगा, मैं अपनी धी नू तुहाडे कोड़ी दे लड़ लाना चाहना। जिन्हां दा बच्चा सी उन्हां दा किरदार भी कंब गया दुनी चंदा, के देख का साडा बच्चा तां कोड़ ने खा लिया। तेरी धी सोहनी सुनखी मालक दी कृपा, ओदा तन बिलकुल आरोगे। तू अपनी धी नू किसे होर स्याणे सूझवान दे लड़ ला दे, पर कहिंदे ने ओ दुनी चंद ते कोई असर नहीं। उस कोड़ी नू लियांदा गया, ते इस बीबी रजनी नू इस बच्ची नू उस कोड़ी दे लड़ लाया, ते उन्हें परकर्मा कीतियां, इस बच्ची दे फेरे कोड़ी नल करा दिते हन।
1: नहदा इसको निरपने दीना, मन मूरख ने हठ दिड़कीना।
0: कवि जी कहिंदे धी नू घरों तोरन लगा, ओ चारे तियां दूसरियां भी देख दियां पईयां ने, जेड़ियां कहिंदियां सन देण वाला एक बापू है एक पिता है। जदों इन्ने धी नू तोरिया, केवल तन दे बस्तर दिते ने, इस पापी बंदे ने अपने घरों एक टका भी उस धी दी झोली विच कोई दाज वास्ते नहीं पाया, कि लै धीए किते मुसीबत आवे इन्हां रुपईयां नू वरत के तू अपना गुजारा कर लई। ओ दाज देगा भी क्यों, जेड़ा नरदई कठोर किरदे वाला हंकारी मनुख अपनी धी नू कोड़ी दे लड़ लांदा पिया है, ओदे तो बच्ची वास दे भले वास्ते कोई आस नहीं हो सकदी।
1: कन्या मन प्रभ भावी मान, समीशर के से पत जान।
0: कवि जी आखदे ने उस बच्ची ने परमेश्वर दा भाणा मन्या, कहन लगी, सतगुरु गुरु नानक साहिब तेरे बचना ते यकीन करके मैं कह दिता है, के देन वाला एक परमेश्वर है, एक कृपा करी जिदे लड़ तू मैनू लाया है। मेरे बापू ने जिस दे लड़ लाया, एक ता मैनू एदे ते पूर्ण यकीन बनिया रहे, मेरा मन साबित रह जाए, मेरा अंदर किते डोले ना, तेरे भाणे नू मैं सत करके मन लवां।
1: साधन सासरे दारद महा, पहरन खान ना प्रापत जहां।
0: कवि जी आखदे ने अज पट्टी दे लोक देख दे पए ने, कोड़ी दे लड़ लगी ए बच्ची जदो गई, सौरे घर दे अंदर ना ता पान नू बस्तर ने, ना खान नू भोजन ने। जो कुछ कुछ कु दिन उथे टिकी, जो कुछ घर विच है सी ओ अपने पति नू बना के दिता है।
1: केतक दिन दुख पहको सहयो, बहर अंत के चल मैं चहयो।
0: कुछ दिन इस बच्ची ने दुख भुख नू अपने तन ते सह ले, ते अज ओ जदो पति भी देखदा है, ते आखदा रजनीए, पता नहीं मेरे ता नसीब मंदे सन, मेरे भाग ता माड़े ने, मैं ता पता नहीं केड़े कर्मा दा फल पिया भोगना वा, ते घटो घट तू ता मेरे तो गुरेज कर दी, तू मेरे लड़ ना लग दी, शायद तेरा भला हो जांदा। पर अगो उस पति बरता ने उत्तर दिता, नहीं पति, जे एक वरी तेरे लड़ लग गई, उस परमेश्वर ने जे लिखिया सी तेरे लड़ लाना।

जप आदि सच जुगाद सच है कि सच नानक होशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता

उंदे दर्शन करने ने जिदी कृपा नाल मैं संसार ते आया। ते मां होका भर के कहिंदी सी, पुत्तर जिदी कृपा नाल तुसी दर ते इस संसार ते आए, ओ अपना ठीकरा दिल्ली दे बादशाह दे सिर ते बन के प्रभपुर प्याना कर गए ने। उन्हां दे तख्त दे मालक उन्हां दे पुत्तर तेरी उम्र दे गुरु गोबिंद राय टिके। कहिंदा मां गुरु ते गुरु ही हन, मैनू उस सतगुरु दे दर ते लै जा। जदों रतन राय आसाम तो तुरिया, कितों कितों तक बाबे नानक दी सिक्खी फैली सी। इहने एक कीमती हाथी अपने घरों लिया, जिस दा नाम प्रसादी हाथी रखिया गया सी। दूसरा इहने चंदन दी चौंकी अपने घरों लई। तीसरा इहने पंज कला शस्त्र लिया। ये तिन्ने चीजां लै के मेरे गुरु गोबिंद राय दे दरबार विच ये आनंदपुर साहिब दी धरती नूं आए। साध संगत जदों ये पहुंचे आनंदपुर साहिब दी धरती ते गुरु गोबिंद राय दे इन्हें दीदार कीते। मैं ये अर्ज सनोजे भी करके आया, सिर्फ इको विशा रखिया सी भी तवारीख दे पन्ने आप नाल सांझे कर सका, केवल अज दा सबजैक्ट इतिहास विचों। ये तिन्ने चीजां लैके गुरु गोबिंद राय दे चरणां विच इन्हें नमस्कार कीती। ते जेड़ा ये हाथी सी इहदा पूरा रंग जेड़ा सी ओह चिट्टा सी, इहदी सुंड तो लै के पूंछ तक सारे तन ते इक काली जी धारी सी। ते सिख विद्वान कहिंदे ने इन्ना सियाणा सी अपनी सुंड विच चौर पकड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी दे शीश उत्ते चौर करदा सी। जदों हजूर ने शिकार खेड के आउणा, इह हाथी सुंड विच पाणी भर के साहिब दे चरणां नूं मल के पाणी नाल धोंदा सी, ते धोण तों बाद अपनी सुंड विच कपड़ा पकड़ के साहिब दे चरणां नूं साफ करदा सी। तीसरा काम इहने की करना, जदों सतगुरु ने तीर चलाने, भावें तीर एक दो चार मील ते जाए, हजारां तीरां विचों गुरु गोबिंद सिंह दे तीर नूं पहचान के उत्थों लिया के साहिब दे चरणां विच रख दिंदा सी। इन्ना सिखाया, साहिब दी चरणां दी सेवा करदा रहा। जिहड़ा पंज कला शस्त्र सी इहदी कला दबांदे सन, गात्रे दी कृपाण बन जांदी सी। शस्त्र इक्को ही सी, कला दबाणी विचों पिस्तौल निकलना, कला दबाणी विचों खंजर बन जाना, छोटी जी गुरज बन जानी। कहण तों मुराद एक शस्त्र विचों कला दबाण नाल बटन दबाण नाल पंज शस्त्र जिहड़े सन उह निकल आउंदे सन। फिर इहने कीमती एक चंदन दी चौंकी भेट कीती। साहिब दे चरणां विच दातां दे के रतन राय वापस चला गया। ते जिस रियासत विच आनंदपुर साहिब वसिया, उस रियासत दा नाम सी कहलूर। ते कहलूर दा उस वक्त राजा सी भीम चंद। कहिंदे ने एक वारी इह साहिब दे दरबार विच आया, जो पंघाणी दे जुद्ध दा मुढ वजदा है। सतगुरु दे घर विच आया, इस प्रसादी हाथी नूं तकिया, चंदन दी चौंकी तकी, पंज कला शस्त्र तकिया, ते गुरु के दरबार दी महिमा देख के अंदर जेड़ा इक्को दम ईरखा विच भड़क उठिया। एक फकीर बंदा पहाड़ी ते रहिंदा है, इहदे कोल इन्नियां कीमती वस्तुआं, इह दाता इह चीजां तां मेरे वर्गे राजे दे घर विच होणियां चाहीदियां। मन इक पुरना बना लिया, मना जिवें किवें होवे गुरु गोबिंद सिंह तो छल करके धक्का करके जोर करके इह चीजां मैं खोह के अपने घर लियाउणियां। वापस तां गया चला, पर कुछ दिनों तो बाद भीम चंद दे पुत्र दा नाम सी अजमेर चंद। एदा रिश्ता कहिंदे ने एक श्रीनगर रियासत है, उस वक्त रियासत सी। खेमकुंड साहिब नूं जाओ, अजे भी ये पौंटा साहिब तो अगे शहर हुंदा है श्रीनगर। इस रियासत दा राजा सी फतेह शाह। फतेह शाह दी लड़की दा रिश्ता राजे भीम चंद दे लड़के अजमेर चंद नाल होया है। ते जदों बच्चे दा सगन होना सी, इहने इक चाल चली के मना गुरु गोबिंद सिंह दे दर तो मिठी जी चाल चल के ते सारियां चीजां मैं अपने घर विच लै आवां, एक वारी लै आवां ते इस फकीर दी की ताकत मेरे तो चीजां दोबारा खो सके। सिख तवारी कहिंदी है इस भीम चंद ने अपना मंत्री वजीर भेजिया कि यह सारियां चीजां प्रसादी हाथी काबल दी संगत दी भेजिया होया कीमती तंबू ते चाननी कनातां, यह चंदन दी चौंकी, मेरे घर विच रिश्तेदार आउणे ने, एक वारी दे दिओ ते जदों बच्चे दा सगन लग गया मैं ये वापस कर देंगा। आ के वजीर ने फरियाद कीती ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने सुन के एक गल कही सी, कहन लगे ओ मंत्री जे किते भावना शरदा नाल आउंदो ते शायद ये दाता ये चीजा तुहानू दे

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे कम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा

गुरु अर्जुन विगनन के नाशक, विगनन के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी नमो।

माणिक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेहे

उस वक्त मना रहे हैं सब कहेंगे जी सर्वी सचे पातशाह गरीब नवाज अंतर जामी श्री गुरु रामदास साहब जी का जो अवतार होया सब संतों को बधाई होवे सवा पहर के अमृत वेले किशोर कुमार प्रगट होए उस वे बाद भाई संतोष सिंह साहब ने लिखा है कि महाराज के प्रगट होने की इन्नी खुशी हुई वरुण देवता ने पलट करके अपने जल के रूप में दुर्धिया नदियां उस वक्त बागिया सवा पैर के करके दुर्धिया सारिया नदियां जो दुर्धी बागिया उस वक्त ऐसा ऐसी खुशी वरुण देवता ने मनाना किसी गुरु रामदास साहब के प्रगट होने को देवतियां मिल करके चंदन कसा के कल्प दृश्य फूलों दियां महाराज गुंद गुंद के चूना मंडी जो लाहौर में गुरु महाराज हो जन्म स्थान है जो श्री हरिमंदर साहब की शक्ल के नाल स्थान बनिया होया सुंदर बड़ा सुंदर जड़ती है उस मंदिर के उत्ते महाराज साहब के अवतार धारण की खुशी का संत संगत जी चरण कसा के फुल कसा के फुल दिया माला गुण गुण के उस मंदिर के अर्पिया सुख खुशी के शंख बजाओ उसे देवते सारे देवते मेरे को गुरु महाराज साहब के अवतार धारण की खुशी बूहे के अगे आके महाराज का जस गाया कीर्तन गाया क्यों राग रचाया आनंद जगत्र राग राग ने मंगल गाया सारे संसार में इस प्रकार आनंद प्रगट होया रागा रागनियों च मिल मिल के देवतिया ने गुरु साहब का जस उच्चारण किया क्यों सवा पैर दे करके अज अमृत वेले महाराज साहब आपकी वे पिता का शुभ नाम जेड़े कई जन्मों को ला के तपस्या करते सन बाबा हरदास जी नाम सी उन्हें तपस्या में इच्छा सी कि महाराज मेरे घर में आप अंतर्यामी बालक रूप में प्रगट हो माया दया कौर जी जो सतगुरों की माता सी ये भी नाल तपस्या कर रहे उन्होंने बहुत सारे जन्म गुजर गए सन इस जन्म में अंतर्यामी ने उन्हें इच्छा पूरी करके सतगुरु रामदास रूप अंदर प्रगट हो सके पातशाह इस प्रकार साहब संगत जी अज गुरु है जिस दिन गुरु रामदास साहब जी ने अवतार धारण किया है अज श्री अमृतसर साहब इस गुरपुरब के नाई बड़ा चढ़दियों कला के नाल मनाया जा रहा है बेअंत संत कीर्तन दियां चौकियां बड़े बड़े रागी मिल करके बेअंत संतों के इकट्ठे होके सतगुरु सच्चे पातशाह के श्री दरबार साहब के अंदर गुरु के बाग के अंदर दीवार सजे हुए हैं तरह तरह के अपने जस के फुल गुरु महाराज साहब के पास शब्दों के राही कीर्तन के राही अनेक तरह भेटा कर रहे हैं सतगुरु उन्होंने प्यारियों अपना सुखी सुख प्यार बख्शन अब आप संगत इतने महाराज के सतसंग दरबार से गुरुगुरु मना रहे हैं इन्हें सतगुरान साहब संगत जी महाराज जी इस चर्च बड़ियाई है जो कही नहीं जाती आप हर रोज समाज में ही लीन रहा कर दे कोई कारो विहार घट लाया कर दे आप जी भी थोड़ी जी जब बड़ी उम्र हुई 13-14 साल की उम्र वड्डी होगी उस वक्त पिता ने किसी ने कहा कि तुम कोई घर का कारो विहार करो बाकी ये सारे जिन्हें लोग होंगे वो लड़के थोड़ी उम्र में सारे घर के कारो विहार कर दे तुम कोई कार विहार क्यों नहीं कर रहे हो आप जिन पिता के हरदास के अनुसार हो कहते जो महाराज आप आज्ञा करो माता जी ने उस वक्त रात में चने भ्यों के उबाल के दे दिते चंगेर भर के ढूंढियों भी आपने दे दी गई कि लो जिस तरह हो बच्चे

1975 तक करीब 22 साल का समा बनता है ते ओदे दरमियान इन्हें 11 हमले किए ने अब पंजवा हमला है जिहड़े नाल तुहाडे सांझ पाउण लगा है। इस बारी इन्हें विचार बनाई किन्ना चंगा होवे जे मैं इस बारी सिखा नाल ना टक्कर लवां, सिखा नाल टक्कर ना लवां, सब तो पहले मैं मराठिया नूं खत्म करां क्योंकि मराठिया ने हुण नाल रल के सिखा दे अदीना बेग दे नाल रल के ते इन्हां ने जिहड़ी मेरी फौज नूं तरथली मचाई है मैं उहदा सबक सिखावां। इक गल होर चेता रखियो जे राजनीतिक बंदा कदे भी नहीं चाहुंदा मेरा दबदबा खत्म होवे, ओ दबदबा बनाउण वास्ते भावे कितना ही कहर करना पवे ओ कर देंदा है। पिछे जिक्र आ चुकया होया नादर शाह दी 1739 भी सिर्फ इन्नी कु गल फैली सी भी नादर शाह मर गया, मार दिता है ते उहदे बंदे कतल कर दिते सी, उहने तलवार कढ के बाहर रख ली, 1.25 लाख 1,22,000 बंदा एक दो रातां विच कतल कर दिता सी दिल्ली दे विच, सिर्फ इसे लिए भी दबदबा बनिया रहे कल ना कोई जिक्र करे भी नादर शाह मर गया, इको हमला किया सी उहने। उसे गल वल फिर चला, हुण उहदे मन विच विचार है सब तो पहले मैं मराठियां दे नाल लोहा लवां ताकि उहनां नूं अपने अधीन कर लां। हुण 1760 विच उह चलिया ते चलिया ते काफी समां उह इधरले पासे विचरदा रहा, पर इहदे दरमियान गुरु के सिखां नाल उहदा फिर वास्ता पिया ते उहनां ने जहान खान ने अपनी फौज अते कुछ एक बंदे नाल लैके उहदे उत्ते फिर सिखां दे उत्ते हमला करना चाहे, सिखां ने भी हमला कीता ते इहदे दरमियान जहान खान दे नाल जदों टाकरा होया, अहमद शाह अब्दाली नाल जदों टाकरा होया उदों सिखां ने एक बड़ी अजीब ढंग की जंग लड़ी। अहमद शाह अब्दाली कहिंदा जहान खान नूं भी तू सिखां दे मगर ना जा, ये हमला करके वापस आ गए। खास करके दो वेले हमला करिया करदे सन, एक जदों उहनां दी फौज तंबू लाउंदी हुंदी सी उलझी हुंदी सी या जदों सवेरे तंबू पुट के अगले कूच करन वास्ते तैयारी करदे, दो वेले हमला करदे सन। जदों उहनां ने हमला कीता ते उहनां ने विचार बनाई भी किन्ना चंगा होवे जे आपां इहनूं बचा लईए, ते जहान खान नूं रोकणा चाहिया पर जहान खान नूं अपनी फौजां उत्ते बड़ा मान सी, उह गया ते सिख वापस परते ने पिछे हटे ने ते उहनां ने मगर आके हल्ला कर दिता। हुण सिखां ने दो धड़े बना ले, दो टुकड़े बना ले अपनी फौज दे, एक पासे जस्सा सिंह आलूवालिया दूजे पासे जय सिंह, एक नैया मिसल दा मुखी सी पिछे जिक्र आ चुका होया, यह भी एक पासे चरत सिंह एक पासे गुजर सिंह नाल उहदे लहणा सिंह, यह एक धड़ा बन गया, चरत सिंह शुकर चकिया लहणा सिंह ते नाल गुजर सिंह यह एक जत्था बन गया, एक पासे जस्सा सिंह ते जय सिंह यह एक धड़ा बन गया, दोवें वखो वखरे हो गए। हुण अफगानिया की फौज आ गई, देखो दिमाग च रखो अपनी तस्वीर किवें लड़दे सन सिख जुगत नाल, ते ओ अफगानिया की फौज आ गई, हुण दो धड़े ने जे ओ इधरले पासे पैंदे ने तां इह हमला करके उहनां नूं फिर मार दिंदे ने, जे ओ इहनां नूं छड्ड के इहनां वल पैंदे ने ते ओ हमला करके इहनां नूं मार दिंदे ने, दोनों धड़ियां ने इहो जे आहू लाहे। जहान खान ने फिर भज के जान बचाई, आखिरकार अहमद शाह अब्दाली कोल जाके खिमा मंगी। जिहड़ी गल मैं करनी चाहुंदा, समां बहुत नेड़े है, यह 24 अक्तूबर नूं विचों बिल्कुल शॉर्टकट करन लग्गिया मैं, 24 अक्तूबर नूं कुंजपुरे करनाल दे लागे इत्थे मराठियां ने आके कब्जा कर लिया। मराठियां दी फौज भी बड़ी वड्डी सी, करीब 2 लाख की फौज उस वेले लड़न वास्ते आ रही है, ते अहमद शाह अब्दाली भी उत्थे पहुंच गया। 24 अक्तूबर दीयां फौजां पानीपत दे मैदान विच पहुंचियां होईयां, याद रखियो जे दोवें एक दूजे ते हमला करनियां नहीं, दोवें अजे शांत ने, लड़न वास्ते आईयां होईयां ने, दोनां नूं एक दूजे दे विचारां नूं समझदियां भई किवें लड़ीए, क्योंकि दोवें वड्डियां ताकतां ने। उस वेले लड़न की तैयारी करदिया करदिया 14 जनवरी 1761 का वक्त आ गया। कुंजपुरा जी तुहानूं ना भुलिया होवे, सिक्खी की बड़ी सांझ है इहदे नाल, कुंजपुरे का वजीर खां सी, उस सरहंद का नवाब जिन्हें छोटे साहबजादे शहीद करवाए सन, इसे करनाल के कुंजपुरे का पापी है।

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेला हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले त्यार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े दे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहनी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गए है के जवे, उकसे उपर चढ़ बे तवे।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो पुन जननी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वह भी समझ गया कि गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैणा करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे, अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: आपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बादशाह जो नरंगा है वो तो भी नहीं डरते। ये तो बड़े भारी जिन्हों बाहों के इन्ना जोर है, इन्ने बली ने, इन्ह के सिंह इन्ने योधे ने, सो इस करके बड़े भारी योधे हैं।
1: देश उजाड़े छीने ग्राम कई बेर तीनों संग्राम,
0: इन्ह ने कई बारी अपने नाल जंग किया है, अपना जिहड़ा देश कहलूर है या होर इलाके ने ये सारे इलाके कई बारी इन्ह ने उजाड़ दिते हैं।
1: मुखी सेना के मरे हमारे आद केसरी चंद जुझारे,
0: ये केसरी चंद तो आद लैके होर जिन्हें योधे सन सारे साडे जरनैल राजे महाराजे ये इन्ह ने बहुत सारे जंग दे विच

0: सिमरै तिनु मरन डर हीरे।
1: हुण जंग दे विच किन्ने बंदे मारे गए ने देख लो, जे उन्हां नू याद करदे आ फिर डरे रहीए भी इन्ने पहला मर गए, साडे जरनैल मर गए,